है सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोहन कच्छ खाई उठे पाए नानक गया कर्म कांड का एहो ज्ञान कांड का केते पौन पानी वह मंत्र केते

कैसे कैसे रत्न ढूंढ कितिया पानी कितिया पानी कैसे पाप कितिया सुखी नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान पर चंद।

निर्विकार पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत

अपना ज्योतिष दी वडियाई ज्योतिष पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहू साहा पत साहिब नानक।

करहाइया, आखण वाला क्या बेचारा, शिफ्ती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक

पाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा ना हुवे घाट ना जाए ना।

मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया।

शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद पर

तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया सब निदान। दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतो

जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

प्यासा तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो।

तुम्हारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पाओ आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाओ आब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे पे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब

तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाही, उथै तेरी रख अग्नि उदर माही। सुनकै जमके दूत नाए तेरै चढ़ जाहि, पाओ जल बिकम सगाहू गुरु सबदी पार पाहि। जिन कौ लगी प्यास अमृत से काहि, कल मह एहो

गुरु नाऊ, सतगुरु सेती रतिया, दरगह पाई ठाऊ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे, जग मैं उत्तम काढ़ी है, विरले के ई के महला पंजवां।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर सगल समग्री तुम रह सूत्र तुम ते हो ए सो आ गया तुम।

नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो

इतनी सेवा प्रवान करनी जी पुलाचका दिखेवा आओ हूं अति सतकार योग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी खालसा तिना पासों पावन पवित्र चल रही लड़ीवार कथा सरण करिए जी मिलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह।

वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपीव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सत गुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावे नाद बाद बिस्माद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साध संगत सपरंपर अवगत अलख अपेव

शिव रेहो सिर जनहारो। तुम गावो मेरे निर्भाव का सोहिला, हाँ वारी जित सोहिले। सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े संभाली, अन देखेगा जे मनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे जाते कमन सुमार। संभ साहा लिखिया मिल कृपा वो तेल, देहो सजने असीसड़िया, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा चितिवारी माहो होवा सूरजे कोरुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी मोहल्ला पहला गगन में तार रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तोप मलयान लो पमन चवरो करे सगल बन राय

अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर पौ शुभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वडा हे जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औद कटै दिन सरहना रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एव संसार विकार संसे मैं तरय ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨੇਕ ਵਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ, ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹਉ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਜਿਹ ਪੈਂਡਾ ਏ ਮਹਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ, ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਹ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਾਨ ਤੁਜ ਆਕਰਖੈ, ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਾਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ, ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਬੇਕੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੇ ਬਿਯੋਗ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਪਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਤਰੇ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਐ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁਨ ਦਾਨ ਹੋਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤਨੇ ਮਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ, ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀਵੈ, ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤਉ ਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ, ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ, ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ, ਮਨ ਹਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ, ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ, ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਭ ਪਿਆਲ, ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ, ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ,
चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपो ना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी सो बालो रै साध संग ए हो मै शुरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मै पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो बनिए सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को धन तेरू नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तिरु मान सगल कटा कौ दे बहुदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गात मित जन हूँ आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक यावर न जान सुकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम किरिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मैं उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिह घट वसै हरे नाम सलोक निर्गुण यार यान्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निबहि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न मैं जिने उबारिया बार बगस था तुझे प्यारा दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साख सैन मुख्य पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कशु न बूझै बख्श लेहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै सुत भरात मीत बनता संग हसै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूढ़ अंध ब्यापे नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर साध सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगाह मान तिसे बिसारे मुगद अजान सदा सदा ए भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तब प्रीत पासम संग होए अंधकूप मै पतत बिकराल नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरह अथा जाकै अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जान सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ऊड़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निस कहिया तौ समझै पूरा कहा बिशन पद गावै गुंग जतन करै तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहां सगवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह आहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लेहु आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी
तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग है आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पी न दे दस पी हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिउ नाही चारा ताको की जय सद नम सुकारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहु मन बूठा जिस जान अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगंत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतै आनंद उलास अपनी अमान कछ बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिसकी वस्तु तिसे आगै रखै प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसदे चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया की हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया सिउ रंग लावै ओ बिन सै ओ मन पछोतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहे तह अंध अंधार बटाऊ सिउ जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रस हस्ती अस बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेप हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान आस थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को थावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कै होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन के नरारत दाम धन धन ते जन जिहे कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हूं गंड लावत जन नहार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन मै मरै जिसका अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जान चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप करत न बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसाए सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाट पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताकू जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जापत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंजन देही लिव लावौ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छेदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुँचै मन सा सा सिमरहु प्रभ ऊचे जिह प्रसाद
ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਾਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤਾ ਸਵਾਰੀ ਮਾਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸੈ ਧਿਆਈ। ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਹੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਹ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਰਹੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਾ ਬਿਸਮਾਦ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸਹਿਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੁਨਾਉ ਆਪ ਗਾਉ ਆਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂੰ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਸ ਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਂਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੇ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨੇ ਸੁਤਾਰੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤੇ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ।
साध पै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा बेद न जानै जेता सुनै तेता बखियानै साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए आवर न पेख है एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मै कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्ब कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लग तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै कू चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक ज्यों पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रकाश जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसो ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाशो ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होय सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी आहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंतो ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंतो ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ बाल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ पूजय महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतन पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उर तारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपारस सगल निस्तारै अष्टपति मिथ्या नाही रस न पारस मन मैं प्रीत निरंजन दारस पर त्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर न सुनै काहू की निंदा सब ते जानै आपस को मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मध्ये ओ ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत होवै नेह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भागत कीर्तन संग राचै मान तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ऊ वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै
ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ, ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ, ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਚੌਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੂ ਨਾਮ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਤਾਰੈ, ਪਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵੇਖੋ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ, ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਲਖੀ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਸ਼, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵਨ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਪੇਗੋ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਆਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਸਰ ਬਿਰਖ ਨੇ ਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੇ ਸੁਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਹਨ ਤਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पय साध साध ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को साथ साथ समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस पावै सोई होग हरन किनमै थाप थापण हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तहार तहर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मै रहा समाई प्रभ पावै मानुख गत पावै प्रभ पावै तां पात्र फरावै प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै तां हर गुण पाखै प्रभ पावै तां पतत उधारै आप करे अपन बिचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै पर मैं भूला दै दिसतावै निमक माहे चार कुंट फेरे आवै कर कृपा जिसे अपने भगत दे नानक ते जन नाम मिले तिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट पशु ना आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बखसीस ताका लेखा न गने जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जी वै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोक हर रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पायाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहे बड़ राजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुरप्रसाद नानक सा चुका है कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तहारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन परमै परमिया नाना रूप ज्यों स्वंगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवे नचावै ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा वरना कोय कबहू साध संगत ए पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सु नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जुवन वंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्म वंत कहावै जन्म मरै बहु जून प्रमावै तन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर कर बावै तृण समान काश संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कूट कर्म करे हों तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्र वै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंज जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे कु बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख को उठतावै तृपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या की करै नह तृपतावै खप खप मरै
बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बटपागी किसे प्राप्त होए कर्ण कराव न आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कै शकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मर न बिन सया वै न जाए नानक साध ही रहा समाए आप उपदेश है समझे आप आपे रचया सब कै सास आप कीनो आपन विस्थार सब काश उस काउ करने हार उसते भिन्न कहो किश होए थान थनंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अस सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुख ने आर जा कटै संत कै दुख न जमते नहीं छुटै संत कै दुख न सुख सब जाए संत कै दुख नरक मै पाए संत कै दुख न मत होए मलीन संत कै दुख न शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोई संत कै दुख न धान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यून लवै संतन के दुखन सर्प ज्यून पाए संत के दुखन त्रिगत ज्यून किरमाए संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै संत के दुखन सब कुशलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी कथाओ को नाहे नानक संत पावै था ओ पी कत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी यार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावे ता उस कापी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे तन लय मिलाए संत का दुखी याद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवर न रखन हार नानक संत भावे तां लए उबार संत का दुखी एवं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईदन नहीं त्रपै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ ते लखी तुमाहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पाया नानक जो तिस पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजा नासा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न त्रष्टे कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घाट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास विरास सब कछ वरता तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना किरा आप करने हार दूसरे कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे तिसे आपन नाम दे बड़पागी नानक जन से सलोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदि मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन कोय कह भगवान जिसके दिए रहे अघाए बहुर न तृष्णा लग आए मारे राखे को आप मानुख कह किश नाही हाथ तिसका हुकम बूझ सुखोए तिसका नाम रख कंठ करोए
सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बेगन अलग कोए उसत मन मैं कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणे संसार मन तन मुख बोलै हर मुखी सदा सदा जानो के सुखी एको एक पछाने एत ओत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिनै निरंजन जानिया गुर प्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुजै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी खटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसै न लागै दुख जिसको हर प्रभ मन चेते आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब केश मूल नानक सो सुखम सोई असथूल नह किश जन्म नह किश मरे आपन चालित आप ही करे आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड तारों तार रहे ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेलाए कृपाल गुरु का शब्द जप पए निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनों कृपा करे बड़ भागै नाम जप तपावै बिसराम नानक तिन पुरख कौ तुम कर मान ज्यो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए हो वैसे होए करणे हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हू बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन हार जाकै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सो प्राणी लो चै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गात नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को करबै जन सब किश तिसका दिया दरबै हत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कह तावै जे को होए बाहे दातार किस देन हार जन गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन ज्यो पखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महाध्यान मैं मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछु करै सोई सुख मान भूला काहे फिरिया जान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे उरा सुलोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद के बसंत है संगचाल अवर त्याग विख्या जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वपार वरला वपार नानक तक है साध बल हार है चरण साधगे धोए तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बट भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक विघ्न ते साधु रख हर गुण गाए
अमृत रस चखै ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जी वालन हार भूखे को देवत आधार सर्बिन धान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए। सब किश तिस प्राउ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय को होए सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समता सलोक। रूप न रेख न रंग किश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मै राख मानुख की तुम प्रीत्याग तिसते पर नाही किश कोय सर्व निरंतर एको सोए। आपे भी ना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ। मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल साध जाकै सारब थोक सुनिए घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी ताप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करै एक रंग नाना बेद कीनो विस्थार प्रभ अविनाशी ओंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपने कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंतु नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे आपने नाम लाए नानक चौथे पाद मैं सो जन गत पाए। रूप सत जा का सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत भजन साधु उपदेश सत तेज जन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बूझै जे कोए नाम जपत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया। जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया ते साया स्वाद। प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार। जन का सेवक सुवट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक। आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत त्यावन हार। आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जस सुनता।
ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਬੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੂਟ ਲਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕੱਢ ਤੇ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਦ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੇ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਮਾਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸੇ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਾਧ ਪੈਰਾ, ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਨ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਤਿਹਾਵੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਕਹਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਭਰਮ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਖਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਓ ਜਾ ਕਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ,
ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹ ਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਾਬੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ। ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ

0: साध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोय सर्ब निरंतर एक को सोय पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साधक संग राचे रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अष्टपदी संत जना मेल करहो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद मैं उर तारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ एहो धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कोंट उठ धावै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भज हर की सरणी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवपद लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान
1: नानक दरगह परवान मंत्र बोधो हर कै नाए दे दिस तावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय से हर सोए कलता ती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाया तम परगास तित कर जाए बस अबनासी कहु नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत सासत बेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संगना चालस तेरे तना तू क्या लपता वह मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इंते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इंते कहो हो कवन छुटकारस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सहज सुबाए नानक गुन गाओ गुन गावत ते उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियानत सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दर गै जयकार सर्ब निरंतर एको देत कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन माहे एक के गुण गाओ अनंत मंतन आप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूरन पूर रहो प्रभ आप अनक विस्थार एक ते पए एक राध पराचत गए मंतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तव सर नाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी।

पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साधु कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास दिन निवलाग बड़पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल।

लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काडै जन्म जन्म का टूटा गाडै गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम मान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपो अवरह नाम जपावहो जप

तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग को किसे व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होत परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत

जाने सोई किव करया था किव सालाई क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै इक दू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा काहू है नानक जी को आपौ जाणै अगै गया न सू है पातालां पाताल लख आगासा आगास कूड़ कूड़ कपाल तके वेद कैनिक वात सहस अठारह कैनक तिबा सलू इक धात लिखा हुए त लिखी है लिखै हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुद्र न जानिए समुद्र साह सुल्तान गिरहा सीती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनहु न विसरह अंत न सिफती कह नयंत अंत न करण दे नयंत अंत न वेखण सुन नंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कीते बिरलाही ताकि अंत न पाए जाही हु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा ताऊ ऊचे उपर ऊचा नाऊ एवड़ ऊचा हुए कोए तिस ऊचे को जाने सोए जेवड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगै जो दपार कितिया गणत नहीं विचार किते कप टुटै वेकार किते लै लै मुकर पाही किते मूर्ख खाही खाही कितिया दूप भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार बंद कलासी भाणै होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओ जाने जितियां मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखै से पे के ही के जिसनु बख्शे शिवसा लाह नानक पातशाही पातशाहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारी अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाए अमुल पाए अमुल ला सुमाए अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल मुल परवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान मुलो मुला क्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करह वख्यान आख वर में आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख केते कीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुन जन शिव किते आख आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे ते किते होर करे ताख न सकह के जीवड़ भावै

मुखवा पातशाही दसवीं छपै चंत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के अचल मूरतन भव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रा साहि साहान गनी जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन।

काम है, देह है, अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनील है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है।

भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोघी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सासांग नमो कूप कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता दो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछिदी अभिधी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्तुतामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकीजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत कर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुर कपारु सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जत्र तत्र विराजी अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जौन आद असी देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा

अरे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानही जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जा पा देवनाद मूर्त तापियो सबै जीता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखपा सर्व विश्वरचो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत लख अपेश अंगराग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक आप रूप अमीक अनुष्ट देख पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नांगन पौ प्रकाश निश्चिनाना साजन बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन पूत

ज्ञानी चित्र चक्रवर्ती चित्र चक्र भरती चित्र चक्र पाली चित्र चक्र काली चित्र चक्र पासी चित्र चक्र वासी चित्र चक्र मान्या चित्र चक्र दान्या चाचरी चंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चत्तव प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्म किया भंज भरमै किया भिज लोकै किया दित सुकै के अवतूत बरनै के बेभूत करनै कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि बर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदिव है कि आप अपीव है कि चित्रं बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बेअब है कि गै भुल गैब है कि अकुल गुना है कि साह अनुसाह है के कारण पुनिंद है कि रोजी देहिंद है कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र भौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्या कि सर्वत्र थाप्या कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहीम है कि आकिल अलम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तमाम लरजू है हमीसल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाक यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव लकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभंग सर्वभाग्ये सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है।

भक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिख हैं, अलिख हैं, अपीक हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चिरपुट छंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्मं परमात्ते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनमे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंग त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकुं सरी कह मितो अमी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद किसाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशर सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसन

मतिक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीत कहे हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न केहु सब तो हे बखान्यो।

लाजयस्तु गोबिंददास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंदिक को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दोता गावो हरि के रामन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साची साहिबा क्या नाही घर तेरै, घर ता तेरै सब किचै, जिस देह सु पावे सदा सिव सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब बुझाइयां, सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुर जिन कौसे नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो, क्या करे विचारिया, तुद बास मृत कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, सुनो हुरताओ नाही शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाजो, क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया। कह नानक क्यों आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनु, होर क्या करहै विचारिया, एक भरम भूले फिरहै दा दिस, एक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे। कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आहो संत प्यारे हो कत की करह कहानी है कत केरी कित द्वारे पाईए, तन मन तन सब सौप गुरु को हुक्म मन्या पाईए, हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो कथियो कत कहानी है, मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने, तू सुन मन मेरिया, हिमाया मोहनी जिनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, कुटम तू जे देखदा चलै नाही, तेरै नाली साथ तेरै चलै नाही, किस नाल क्यों चितलाईऐ, ऐसा का मूले ना कीचै जे तंत पछोताईऐ, सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरै नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, गम गुचरा तिरंत न पाया, अंतु न पाया किनै तेरा, आपना आप तू जाने जी, जन सब खेल तेरा, क्या कुआ कुकाने, आखता वे कह सब तू है, जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा गम में तिरंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया, जी जन सब तू दू पाए, वेक परसन आया, लभ लो अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप टुटा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली, चालना निराली भगता हकेरी, बिक मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा, बहुत नाई बोलना, कन्हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना सुमानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाहे त्यों चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाहे तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाहे, सी हर हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावे, ए हो सुहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला, सतगुरु सुनाया, ए तिनकै मन वसिया, जिन तुरो लिखे आया, कि फिरै कनेरे करै गल्ला गली किने न पाया। कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सह सिय संगत सुभाइया। कह दे पित पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहजन उपजै बिन सहजै सहसा न जाय,
न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सहसे जीव मलीन है कि संयम धोता जाए मन तो हो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जी हो मैले बारों निर्मल जीव ता मैली तीन जन्म जुवै हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है जो बेता लिया कह नान जिन सत जया कूड़े लागे तीन जन्म जुवै हारिया जीहो निर्मल बारू निर्मल बारू ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुँचै नाही मन सत सत समाणी जन्म रतंजनी कटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले जी को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जीहो रहै गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात्मै समाले आप चढ़ सदा रह पर न गुर बिनवर न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुरते वे मुख हुए बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होरते कोई पुछो भवे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नजर कर्म होवै हृदय तिना समानी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सार मुकाणी कह नान सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ संभाओ शब्द सेती मन मिलया सच्चै लाया पाहु आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पाए कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताया वेखै गुरमुख सै बुझाए तोड़े बंधन हुवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै कस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनु विसारी है मनु क्यों विसारी है वडदाता जे अग्न मैं आहार पहुँचावे उसनु क्यों पोए न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक के वडदाता सो क्यों मनु विसारी है जैसी अग्न उदर मैं तैसी बाहर माया माया गुण सब इको जेही करता केल रचाया जा तिस भाणा ता जमिया परवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया इह माया जितर विसरै मोह पजै भाउ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हरिया पमुल कह मूल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिलै तिसनु सिर सौपिए विच आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरे आप मुल कह भाग दिना के नानका जिन हर पल लै पाए रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाह कट्यो दिहाड़ियो तन तिना मिलया जिन हरे आपे भाणा कह नानक रास मेरी मन हुआ बन जा रहे रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीऐ हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए एवा रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर हर रस सवि सरे जार वसै मन आए हे शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी भुजिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया
कहना अनुशिष्ट का मूल रचिया जोत रखी था तू जग में आया मन चाओ भया चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सुख दुख न व्यापय गुरु चरण दागे दिन सुभागी अपना प्रजापय अरहत बानी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभाव मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरे आयस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक क्यों शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया हे नेत्र मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया क्यों वे संसार तुम देख देवर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे का हर एक है हर बिनवर न कोई कह नानक नेत्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए सच है सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मंथन हरिया हुआ रसना रस बाणी सचल कविडाणी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो सच है सुन नैनो पठाए हार जीव गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पाओ नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वार लाए भावनी इतना दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नव नव निध किसदंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार है जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया इो साचा सोहेला साचे कर गावो गावो ता सोहेला गावो ता सोहेला घर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जात दुभावे गुरमुख जिना बुझावे ए सब सबना का कसम है जिस बख्शे सोजन पावहे कह नानक सच सोहेला सचै घर गावहे अनद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख काम न होए। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो। जात में जो जोत में

रहीमा अल्लाह तो गणी हाजरा हजूर दर पेश तू मणी दरियाओ तू दहिंद तू बिसियार तू तनी देह लेह एक तू जिगर को नहीं तू दाना तू पीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बख संध तू हरी हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्शलै मेरे स्वामी सरनागत।

शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेम दे गुरपार उतारण खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस सो हमरी रखिया करे गुरु कलगी धर जगदीस बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बिन शब्द रोग न जाई रहाओ। सिमृत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत न पाई। त्रै गुण सबे रोग व्यापे,

आया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरतै तिन निज घर वासा पाया। पूरै सतगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया।

मानमुख दुबिदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझ है रोग गवावह, गुर

सतगुर सेवा लाए, जो इच्छा है सोई फल पावे, गुरबाणी सुख पाए। पहरू महला तीजा, दुख विच जम्मै दुख मरै, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिष्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग

उदर नैसाण न भरिय कबहू तृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन भागी हर हर अमृत पी तृपताते रहाओ आपे पार ब्रह्म श्रेष्ठ जिन साजी सिर सिर धंदै लाए माया मोह किया जिन आपे आपे दूजै लाए।

नानक सतगुर सोझी पाई सच नाम निसतारा पैरो महला तीजा। काल मह प्रेत जिने राम न पछाता सतयुग परम हंस बिचारी द्वापर त्रेतै मानस वरत है

सब इच्छ पुजावन हार रहाओ, सब मैं इको रव रहया, गुरबिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभु, अन दिन हर गुण गाए।

लागा गुरु शब्दे भव जल तरना रहाउ भेख करै बहुत चित डोलै अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौकत फिरै दरबार गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुक्त द्वार अंतर सांत सदा सुख हुवै हर राखिया उरतार ज्यों तिस भावै तिवै चलावै करना किछु न जाई नानक गुरमुख सब

उपदेश प्रहलाद हर उचरै सासना ते बालक गम न करै रहाओ माता उपदेशै प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़हो जियो लेहो उबारे प्रहलाद कहे।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े दुष्ट सभा महमंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहा तुझले उबार खिन मह पयान रूप निकसया थंब उपाड़ हर नाखस नखी बिदारिया प्रहलाद।

जुग जुग भगता की रखदा आया। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किचू न जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा सब दे कोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पड़ है मूल ना पछाण है, बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करह, दुष्ट दैत चिड़ाया। प्रहलाद दुविधा ना पड़े, हर नाम ना छूटे। डरे ना किसे दा डराया, संत

नानक हर नाखस नखी बिदारिया, अंधे दर की खबर न पाई। राग भैरो महला चौथा, चौपदी घर पहला

बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मिलहु गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौ तरी रहाऊ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी

रहाउ। गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ी शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर

सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार, मधुसूदन जपिय उरतार, देही नगर तस्कर

तै खिन खिन तिन कौ हौ बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनिहारी रहाऊ।

जग जीवन हर त्याए तरणे, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने। रहाउ गुर सिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर

प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द

साच पदार्थ गुर मुख लहो, हर का भाणा सत कर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवहो, हर हर हर हर रसना कहो, रहाओ कल युग में है।

अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करे तिन निंद है, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा, अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा। ओम जग जप तप

निरपेक्षता पुरुष निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत बल वढ़ संत पापी पाप असंत मूर यार संत मलेश मल पाए असंत

0: पे जाए है साला जी खाला है नदियाँ पे बाहर पांचों ना जान समुद्र सा करता गिरी तुल
1: अंत न सुनी कह जान अंत न करने देना अंत न देखन सुन।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच सोचे सोच न होवई।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच मार पाए अशांत

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच सुचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे सुधाए शांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मारे न जाना के जो तो पावे सही परिकार।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैलम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी सत्य।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल वाए असंख पापी पाप असंख मूर यार जाए असंख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पा नानक नीच कह मारे न जाना एक जो तुम पावे सही सही कर।

बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन पीतरता भ्रम काठे आ जाई मेरे गोविंद अपने जन को दे वडियाई गुरमत राम नाम प्रगासो सदा रहो सरनाई रहो इहो संसार सब रियावन जाना मन मूर्ख चेत अजाना हर ज्यो कृपा करो गुर मेल तो हर नाम सुमाना जिसकी वथ सोई प्रभ जाने जिसनु दे सो पाए बस्तनु पद मगोचर गुर पूरा अलख लखाए जिन ए जाखी सोई जाने गूंगे की मठियाई रतन लुकाया लूके नाही जे को रखे लुकाई सब कुछ तेरा तू अंतर जामी तू सब ना का प्रभ सोई जिसनु दात करे सो पाए जन नानक अवर ना कोई सोरठ महला पंजमा कर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद किसों जाती किस राधी जा सबको कीता हो सी जो जो दिसे बड़े बड़े रासो सू खाकू रलसी निरपौ निरंकार पव खंडन सब सुख निविदेसी हर ज्यो तेरी दाती रजा मानस बपड़ा क्या साला ही क्या तिसका मोहता जा रहो जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख अगवाई ऐसा तन दिया सुखदाते निखुट न कभी जाई आनंद प्या सुख सहर समाणे सतगुर मेल मिलाई मन राम नाम जप नाम अराध अंधे नाम बखाणी पदे सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी जिनी को कृपाल होया प्रभ मेरा सो लागे गुर की बाणी कीमत कौन कहे प्रभ तेरी तू सर्व जिया दयाला ला सब कुछ तेरा उपतेरा वर्ते क्या हम बाल गोपाला राख ले नानक जन तुमरा सो पिता भूत कृपाला सोरठ महला पंजमा कर पहला चौथके गुरु गोबिंद साला ही ए पाई मंतन हृदय तार सच्चा साहे मन बसे पाई एहा करनी सार जितन नाम न उपजे पाई से तन होए छार सा संगत को वारिया पाई जन एक अंकार आधार सोई सच राधना पाई जिसदे सब कुछ होए गुर पूरे जान आया पाई तिस बिन अवर ना कोई रहो नाम भी होने पचमुए पाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाईए पाई साचा आगम तनी आवण जाना चुकी पाई झूठी दुनी मणि गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नहीं वाए एक कणी सिमर सातर सो दे पाई बिन सतगुर भरम न जाए अनेक कर्म कर थाक्या पाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया पाई बिन सतगुर ना ही जाए बड़भागी गुर पाया पाई हर नाम नाप ते आए सदा सच सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए नदर करे जिसे अपनी पाई जिस पर आपत होए कोट मदे जन पाइए पाई बिरला कोई कोए नानक नाम सच नाम पाई सुन मंतन निर्मल होए सोरठ महला पंजमा दो तुके जोलो पा अपाओ माने तोलो मिलन दूर आई आन अपना करत विचारा तो हों बीच बिखाई माधवे ऐसी देहो बजाई सेवा साध गहो ऊट चरना ना बिसरे मोहत जसाई रहाओ रेवन मुग्ध चेत चंचल चित तुंत कैसी हृदय नाई प्रणपत त्याग आन तू रचिया उर्ज्यो संग वराई सोगना व्यापे वापन थापे सत्संगत बुद्ध पाई सागत जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक रह बनता माया संभे देही अंत की बार को खरना होसी सब मिथ्या असनेही रेदर काहे पपोर ओ देही उड़ जाए क्यों तू बादरो एक भाजो राम स्नेही रहो तीन संजया कर मणिया साजे काचे तग परोही टूट जाओ गे सूत बापरो फिर पाछे पछतोही जिन तम सिर जय सिर जस वारे जिस ते आवे दिन रानी ही जिन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर उठ गए ही सोरठ महला पंजमा गुरपुरा भेट्यो बड़भागी मने पया परगासा कोठ पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै भले हारे आगे सुख पाछे सुख सह जा कर आनंद हमारे रहो अंतर जामी करने हारा सोई खसम हवारा निरपा भाई गुरचरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ हैवी हो वणहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड़ी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रासे नानको गुर पूरा भेट्यो सगले दुख विनासे सोरठ महला पंजमा सुखिए को पेखे सब सुखिया रोगी के पाणे सब रोगी करन करावण हर स्वामी आपन हाथ संजोगी
ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे सदाए अशांत मलेच मार पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कह मारे न जाना जो सुख पावे सही परिपाप।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सोचे सोच न हो गई।

अंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे सुधाए संत मलेच मल पाखाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कह मारे न जावा के जो सुख पावे सही फल का।

तरसी थाप थी तरम था जिसकी तीन गलकर गलकर नया बने कर्मी कर्मी वह विचार जिसे सोहन पंच प्रवान नदरी गर्भ सवै कच्छ पाई उत्थे पाए नानक गया धर्म खंड का एवो

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेश माल पाए अशांत निंद

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।